0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लन खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या थलो सुजी पिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट न यूआरएल चेक लन आछेवा घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैन पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुए तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यहीमरी तुरन्त खबर लन
1: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: उज्यालो रेडियो नेटवर्क दे टीटी एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जुया चंगु सुथैसेचिता या नेपाल वासबुखे प्राविधिक पाछ प्रवीण श्रेष्ठले जी सल्ल रच उपाध्याय चोचलापा दक्ले नापा मोबुख अनला पुरुषोत्तम बैना थौको चाइगु कन्यानल स्ने तछला सुशासन उत्पादन एव विशेष हेगुली प्रदेश थौ बजे थैगु बजेट आकार त दुसान खर्च एगु क्षमता थास कमजोर व अलका खिचा नाप पिछु पन्या करे शान्ति पदयात्रा टोली लुम्बिनी थौ ये थंक वेगु अनला दिस पोग बुख अनला अर्थात पुरुषोत्तम मैना थौको चाटेंगु दु सूर्यमान व चन्द्रमान दथुई पागुली श्री नीला चिनखुनु पेंगु खडी लिपा मलमास वेगु खासा सौर्यमान अन्तर्गत स्वस व खुई न्यानु या दक्षी व चन्द्रमान अन्तर्गत स्वस नेपेन या दक्षी जिगुली चिनिला पत्तिक चिन्छनु पाया हुने गुख तुकत श्रीनिला चिनखुनु पेङ्गु घडी लिपा तसा जिगु लच्छी अधिक मास अर्थात मल मास्य रूपे चुनिगो खस तुक्सी वंगु दिए तीन गति निशे अनला सुरुचु गुख अवलेन्सी यहाँ मत्स्य नारायण देगले मेला सुरुचुको खस उगु मेला न थौ कच्याङ्गो अथे स्वनिगाई थि थि थासे यहाँ नाचङ्गो पुरुषोत्तम महात्म बाख कनेगुलिसे स्वनिगा न्याङ्कय नारायण देगले लच्छी तक्क जुगु पुरुषोत्तम नारायण महिमाय बाख कनेगुन थौ कचाटेङ्गोदु अथे थाडिग्या त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका दुगु नृसिंह धामेन लक्ष्मी तक्क मेला जुगुली थौ कचाटेङ्गोदु अनला जोची भिङ्कुगु यलय हिरण्य वर्ण महाबिहारे प्रज्ञा पारमिता सफुया कने जिम्न्यास्ते तेङ्गु दुसा कने नसे तछल्ला न्यास अनला जोची यामोजीको धार्मिक ज्याखन कने नसे सुचारुजी थ्यो दोथी वैगु शनिबार सिथि नख लागुदु नेगुली प्रदेश सरकार अथवा आर्थिक वर्ष 2083-84 बजेट सार्वजनिक यात्रा सुशासन आर्थिक वृद्धि रोजगारी कृषि पर्यटन स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक न्याय त प्राथमिकता तसे बजेट हेगुका प्रदेश सरकार त्यसमा तयारी हेर्न छौँ गुगो प्रदेश नापाङ्गु दशिवे आका अपुएका गुनिसिया कोपाला व गुनिसिया उलिहे बजेट हेतु चालू आर्थिक वर्ष नेगुली प्रदेश मुक्क सोङ्गो खर्ब निगो अर्ब तका मल्याक बजेट हकुख प्रदेशगत रूपे सेवले बागमती प्रदेश बजेट तकले तदङ्गु व गण्डकी लिसे कर्णाली तुलनात्मक रूप चिधङ्गु बजेट दुगो खसा प्रदेश बजेट तदङ्क हसान खर्च यायु क्षमता दास कमजोर जिया चुङ्गुदु योगको प्रदेश पुँजीगत खर्च नेगु प्रतिशत सिबे कम जिया चुङ्गुदु आर्थिक वर्ष 2083-84 लागि संघीय सरकार नेगुली प्रदेश या त थिथि शीर्षक याना छगु खर्ब गुङ्गु अर्ब खुइ न्यागु कर सुई न्यागु लखत्तका अनुदान उपलब्ध याकेगु व्यवस्था यागु ख तो चालू आर्थिक वर्ष सिबे करिब चिन निगु अर्ब गुङ्गु कर तक्का अप खसा थुकी वित्तीय समानीकरण सशस्त्र सम्पूरक व विशेष अनुदान समावेश ज्याचुङ्गो दुस संघीय सरकार पाखे वगु अनुदान राजस्व बाँडफाँड प्रदेश या आन्तरिक राजस्व नापाङ्गो दया मौजात रकम या आधार प्रदेश देश बजेट दिएको ख प्रदेश देगु कुल बजेट या योगको हिस्सा अझन संघीय सरकार निर्भर ज्याचुङ्गो दुस संविधान अनुसार प्रदेश सरकार असार 1 गते बजेट सार्वजनिक यामागु प्रावधान दुस थोयाङ्य संघीय सरकार वगु जेठ 15 गते बजेट हगु विश्व शान्ति करूणा व मैत्री सन्देश फैलैयाको उद्देश्य नाप सञ्चालन ज्याचङ्गु वाक फर पीस अभियान अन्तर्गत भियतनामी बिच्छु पन्याकर्य नेतृत्व दुगो अन्तर्राष्ट्रिय पदयात्रा टोली मिग बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी थ्याङ्कवगुदो टोली चिन्च्याम बिच्छु घिसिङ उपासक उपासिका नाप अलोका नाय खिचान दुथ्या शान्ति अहिंसा व करूणा सन्देश जोना ज्ञानाचुङ पुचल लुम्बिनी विशेष धार्मिकले आध्यात्मिक ज्याजो ज्यागुदो मियाबनी टोली लुम्बिनी दुगो अखण्ड शान्ति दीप लाग मायादेवी देग तक्क शान्ति पदयात्रा यागो ख मायादेवी देगले जुगु ज्याजोले भिन्छु पन्याकर बुद्ध या शिक्षा या आत्मसात यासे निर्वाण व परम आनन्द या मार्ग न्या हुने मागु आवश्यक जुगु ध्यादेल अथे वेकल यात्रा दुथ्यामा अलोका खिचाबारे चर्चा यासे वेकल खिचाता इलसे यात्रा नपहे न्यासी ज्या चङ्गु व आ शान्ति प्रतीक लिसे दुत्या रूपे स्थापित जुगु ध्यादेल पदयात्रा टोली ये ठ्याङ्क वेगु च्याजोदु ये बौद्ध स्वयम्भू चारुवती व आनन्दकुटी बिहारी अवलोकन लिपा बनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नापलाइगु च्याजोदु सिधा कुरा प्रश्न विचार थोखा उज्यालो रेडियो नेटवर्क स्वनिगले चाहिँ सानो मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क दे अतिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जियाचुङ सुथसे चिता या नेपाल वासो बुखाची सनाथीको दुखे अझ ल्यादनी थनिसे वैगो भदौ मसान्त तक सड़क मुही मदैगो वर्ड फ्लू पुस्ती जुपिए नेगु लख पञ्ची नस्त किसान या त क्षतिपूर्ति बिगु व लोक सेवा आयोग थगु निसोङ ने खुद बुद्धि हनाथ सङ्गुदु उज्यालो रेडियो नेटवर्क न्याचना दिस
1: सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गरिदिऊ त श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो
2: ए हो र अनि सुन्नु त अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर फोक्सोको क्यान्सर स्तन क्यान्सर घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर पाठेघरको मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीड़ितहरूका लागि 1,00,000 छुटको व्यवस्था पनि छ
1: ओहो यस्तो सुविधा रहेछ ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु
3: क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट
4: फोन 0556943333 4935555
0: उज्यालो रेडियो नेटवर्क देयथिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ला प्रसारण जुयाचुङ नेपाल वासो बुखे हाकनाच त लस्कुस्तु आत्तकयामु बुखे हाकनाचका अनला पुरुषोत्तम मैना थौको चाइगु सुशासन उत्पादन ब विषय नेगुली प्रदेश थौ बजेट हाइगु व अलोका किचा नाप पिच्छु पन्याकरिया शान्ति पदयात्रा टोली लुम्बिनी थौ ये ठ्याङ्क वैगु आल्यादनीको बुख थलिसे वैगु भदौया मसान्त तक्क सड़क मुही मदैगु चुकुदु संघीय सड़क सुपरिवेक्षण निशे अनुगमन ज्याको बबर महन मिग सुच पिकासे थोनिला सड़क मुई मदैगुर्गा थागोका बर्खा हिती थ बिजुली टेलिफोन थज्यागु ज्याइनीति सड़क मुहीले थथे भिङके मफैगुली मुई त पनगुर्गा सूचना याथना पगुदुसा सूचना नालामकासे सड़क मुसा कार्यवाही यागुर्गा न ज्याको थिए थागुदु पशु सेवा विभाग स्वनिग नाप बर्ड फ्लू पुस्ती जुगु झिगु जिल्ला नेगु लख पञ्ची नस्त या नगुर्गा थाबुदो विभाग या कथ प्रभावित लाग्या रोग नियन्त्रण या त पञ्ची अर्थात सङ्घ नाप सुङ्गो लख किलो दाना नस्त या गुख काठ यल खोप झापा मोरङ सुनसरी महत्तरी बार चितवन व नवलपरासी खण्ड दुगु लुए या त निङ्के मबित सम्बन्धित जिल्ला रेपिड रेस्पोन्स टीम परिचालन या नगुर्गा विभागीय महानिर्देशक डाक्टर उमेश दाहाल जानकारी ब्यादिल बर्ड फ्लू या खोप विकास मजुगुली संक्रमण खने सातकिहे छङ्ग लिसे सपुदुगु उत्पादन नष्ट यागु खसा अथे झिन्छगु लख खेन नष्ट यागुदु सम्बन्धित विभाग या त नष्ट यापी पन्छी अर्थात झङ्ग या नोक्सानीय मूल्याङ्कन या न क्षतिपूर्ति उपलब्ध याकेगुर्गा विभाग थागुदु लोक सेवा आयोग निसङ्गो थौ नेखुद जुगुदु नेखुद बुदिया छोले आयोग थिथि ज्याजयना हनाछङ्गुदु आयोग्या केन्द्रीय ज्याकु लिसे ये सङ्गु व येन पिनेचिन छगु ज्याकु दुसा आयोग्या फुक ज्याकु थिथौ स्थापना दिवस या छोले ज्याजो चुइतङ्गुदु नेपाली संविधानले निजामती सेवा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल व मेमेगु संघीय सरकारी सेवा पद सेवा लागि पदे पदपूर्ति यागु या त काइगु लिखित परीक्षाकागु जिम्मेवारी आयोग या त ब्यातगुदुसा आयोग सरकारी सेवा दुहावनीको चोले जनशक्ति लेगुलिसे पदपूर्ति या त सिफारिस चाहिँ आयोग औपचारिक स्थापना 2008 साल असार 1 गते जुगो ख सूरी आयोग नाम पब्लिक सर्भिस कमिशन थौकने लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लाग्या तानोइग अपैग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा धागुदो अथे अजन छुदी थथे जिगुर्गा मौसम वित्तेस अनुमान यागुदो थौ कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश हिमाली लिसे पहाड़ी लगाए छुछ थासे व लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली लिसे पहाड़ी लगाए छगुनीगो थासे नयाना मलसे मध्यम कथै वाबैको सम्भावना जुगो महाशाखा धागुदो अथे कोशी प्रदेश तराई कम थासे व मधेस प्रदेश छगुनीगो थासे न मध्यम कथ वाबैको अनुमान याना तगुदो सा हंसा जाने कोशी प्रदेश हिमाली से पहाड़ी लगाए छुसो थासे नन्या मलसे मध्यम कथाई वाबुगु अथे चपुवा गाईगुन सम्भावना दुगु महाशाखा थागुदु अथे बागमती व गण्डकी प्रदेश छगुनीगु थासे हल्का वाबुगु अनुमान याना तगु दुसा देया पहाड़ी भूभागले कोशी मधेश बागमती व गण्डकी प्रदेश तराई लागे आमसिक बदली जिया लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश तराई लागे मौसम मुख्यतया सफा जिगरका महाशाखा थागुदु। सीधा कुरा प्रश्न विचार थोखा उज्यालो रेडियो नेटवर्क चुनिगले चेसा नमे गहज थौया नीति नेपाल भाषा बुखन थनी कुच्चल चिनिता इले हाकना नेपाल खबर जना विगु हे जी दक्ले लिपा थौया मो बुखन हाकना छक अनला पुरुषोत्तम मैना थौ कोचाइगु कन्य नसे तछला सुशासन व उत्पादन ब विषय नेगुली प्रदेश थौ बजे थैगु बजे त्या आकार त र जुसान खर्च यागु क्षमता दास कमजोर व अलोका खिचाना प बिछु पन्या कार्य शान्ति पदयात्रा टोली लुम्बिनी थौ या थंक विगु नेपाल भाषा बुखन सिसा उज्यालो रेडियो नेटवर्क सोनी गले चेसा नमी घास नपाउँदै अतिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ क छक्ल अन्य नदी गुजुल उज्यालो रेडियो नेटवर्क या उज्यालो अनलाइन .com ताजा खबर निने नपम बने पहिले।

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क
2: नेना चुना दिला लहना उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुनिगले छिसन मेगाहर्ज सीधा कुरा प्रश्न विचार दिपाङका हकनचक ज्याजो नेनाछनादी मपासत लस्कुस्थिसा उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेनाछनादीको दु स्वनिगले जेसानमे कार्सना पन्थिथि एफएम स्टेशन उज्यालो अनलाइन डट कम पाखे ज्याजो छिस हलिङ कहे नेनाछनादीको चुल थौया लहना ज्याजो स मेडिबल बुद्धिस्ट पेन्टिङ सप नेपाल थुगु सफु नुगु आ सफु प्यावे टेङु जुल थुगु पति पित बोजा आवेगु शनिबार जुइ टेङु जुल लाछ थौया ज्याजो स थुगु सफु या चोमिलिस बौद्ध विद्वान डाक्टर नरेश साखे जोशी खनावला ज्ञान चुनाउख वेकल से छुन छुन न्यास दुसा लहना फेसबुक नरेस्तु हकनास्क ज्याजो लस्क सियान छन आचिसा नाच देतिल सफ्टी चाहिँ यो कोइन आ थिन्छो उन अर्थात रङ्योपति न खन्दु ठ्याकार काटैदिर इतिहास दहे धनी थोएपति विकास क्रम गे खगर खुफक न दुथ्याउ जुल्लास आ शुरूआत यसक छिन कना दिस आ वो थो मध्यकालीन चोके पाता गयो किसिम चोके पा ख उखी चाहिँ विशेषता चाहिँ गरिछ
3: जिउ मध्यकालीन जिउ जुन चित्रकला दो जीव कला मध्यकाले तस्क विकास जो खण्डो अले छौ जिमुबुडी थो बुद्धिस्ट सर्कल है जीव चाहिँ छौ ढापु छुडु रासा इन्डिया जब भारतले बुद्ध धर्म रह्यो रास जुल बिस्तारै थो बाह्रौं तेह्रौं शताब्दी चाहिँ रास जुगले जुन हिमाली भेगी मनुतेर बुद्ध धर्मै सोर्स जो वो चाहिँ लिपा चाहिँ यो स्वनिङ्ग बेस जो खण्डो खला भिकुटी देवी टाइमै चिसँग बुद्ध धर्मै यो चिज लासा यङको वो दुसा तर मध्यकाले झिगो जब इन्डिया बुद्ध धर्म रासुल अहिले जुन हिमाली भेगबिन गुल्न मनुटोडु इमु लागि काठमाडौँ चाहिँ स्वनिङ्ग चाहिँ कला यो बेस छौ छुटावा छौ हब थिए जुगो थियो वो जुगो जुन थिए अहिले जब अन तटरौ बिहार बनेजी मोनास्ट्री गुम्बा बनेजी अहिले नेपाली टेटर चाहिँ अन इमु बिहार गुम्बा चाहिँ चित्र चेटर चाहिँ सटिगो जुल छोठो एकदम बाँडो रेकर्डेड बाहा चाहिँ गन्डु राजा झियु मुस्ताङ हे झाम्पा लाखाङ ढाउ जुन मुस्ताङ डु वो पन्ध्रौं शताब्दी बने जुपति गुम्बा योपट्टि उद्घाटन या उके योपट्टि फाउन्डेसन टेट उके योपट्टि पूजा या त शोक धाइथे झी गुम्बा चाहिँ चित्र चेट चाहिँ सटिगो जुल छोठो एकदम बाँडो रेकर्डेड बाहा चाहिँ गन्डु राजा झियु मुस्ताङ हे झाम्पा लाखाङ नाउ

0: सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM.
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घाम अनेक शक्तिशाली 4 एंटेना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो खिच्छन्
2: यो रेडियो दिदी बहिनीको समय सूचक हो.
3: अहिले रातिको ठिक 8 बज्यो.

0: तपाईँ सम्पूर्ण घरयासी सामानहरू एउटै छानामुनि किनमेल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, मीन भवन नयाँ बानेश्वरमा खुलेको छ अल इन वान मार्ट सुपर मार्केट। हामी कहाँ लत्ता कपडा, खाद्य सामग्री, खाना नास्ताका पसलहरू, बैंकिङ संस्थाहरू लगायत नुनदेखि सुनसम्मका सामानहरू एउटै छानामुनि उपलब्ध छ। अब घरयासी सामानहरू किनमेल गर्न धेरै पसलहरू चार्नु पर्दैन। सम्पूर्ण सामग्रीका लागि अल इन वान मार्ट सुपर मार्केट, मीन भवन नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ।
1: गंजकी कॉलेज अनाउंस रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर प्लस टू कंप्यूटर साइंस अलोंग विथ होटल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज एजुकेशन एंड लॉ आवर फीचर आउटस्टैंडिंग बोथ रिजल्ट साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल सोशल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट फॉर मोर डिटेल गंजकी कॉलेज मैथी 16 काठमांडू फोन 01496623598510183 Announce registration open for plus two computer science along with hotel management, business studies, management, humanities, education and law. Our feature outstanding

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 10 p.m.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।